0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: It's 29 minutes past 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. गजल या कव्वाली, कई लोग कह रहे हैं गजल, कई लोग कह रहे हैं कव्वाली. तो चलिए, आज है फ्राइडे, गजल आप सबको सुनाते हैं. दिस इज व्हाट अ फैंटास्टिक गजल, वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम पाकीज़ा.
0: गजल

0: जी टिक टिक करते हुए घड़ी जरा समय याद दिला देती है, लेकिन उसके पहले हम आपको ये याद दिला दें कि वीकेंड आ गया है और वीकेंड में भी हमारे बैक टू बैक अमेजिंग शोज होते हैं। कल तो मैं जाने वाली हूँ और मैं मिलूंगी आप सबको कच्चा बाजार बैक्टन में। याद रखिए हमारी जो गोल्ड नाइट सर्विस है वो ओवरनाइट सर्विस है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो जो भी है भाई ज़रूर ज़रूर हमें सुनते रहिएगा।
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
5: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लिखाई रह्यो छे.
6: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
5: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स.
6: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे.
5: दर्शन पण अने यूरोप पण.
6: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
5: कॉल 0208900-2323. द स्टार टूर्स.
6: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 PM. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA, for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 0797686944.
9: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get £166 and 166.59 Bangladeshi taka, 128.78 Indian rupee, 378.27 Pakistani rupee, 433.51 Sri Lankan rupee, 85.40 Afghan Afghani, 1.35 US dollars, 175.24 Kenyan shilling.
10: Laika Radio.
9: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £109.54 per gram.
9: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: Hmm, अब फाइनल एक बार टाइम चेक आता है, इट्स 44 मिनट्स पास 9। आप सभी ने ट्यून इन किया, आप सभी का पसंदीदा लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बस जब आखिरी बार मैं टाइम आपको गिरा देती हूँ इस आवर में, तो कहीं ना कहीं इशारा है कि मैंने जाना है स्टूडियो के बाहर और आप लोगों ने सुने मोर कपल ऑफ सॉन्ग्स। तो नेक्स्ट ट्रैक मैं सुना रही हूँ आपको आन मिलो सजना से पलट मेरी जहाँ फ्रॉम इन द वॉइस ऑफ आशा भोसले। एंड आखिरी ट्रैक रहेगा इस आवर का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फर्स्ट फिल्म का मस्त बहारों का मैं आशिक, ज़रूर सुनिए। दोनों ट्रैक्स बड़े अमेजिंग हैं हमेशा की तरह। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्यार ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना जाने क्यों हम बना के रख देते हैं, है ना। प्यार दो, प्यार लो, प्यार बांटते चलो, है ना। बाकी पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए ही चाहिए। एंड आई एम श्योर आप लोग सारे के सारे, हम लोग जो लाइका म्यूज़िकल फैमिली है, हम लोग अपने पावर का यूज़ कभी नहीं करते, प्यार का यूज़ करिए और देखिए ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती है। और ये संगीत है ना आपके साथ में, ये संगीत आपको कभी बिगड़ने नहीं देगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन लोगों में से हैं जो एक्चुअली प्योर सोल्स हैं, क्योंकि जो लोग संगीत सुनते हैं ना वो बड़े मस्त रहते हैं, बड़े खुश मिजाज रहते हैं, क्योंकि ये संगीत कहीं ना कहीं उन्हें एंगेज रखता है म्यूज़िकल चीज़ों में। और जब आपका दिमाग एंगेज होता है तो जो खुरापातें होती हैं ना हमारी एम्प्टी माइंड्स जो करती हैं खुरापातें, वो कोई खुरापातें ना आप कर पाते हैं ना हम कर पाते हैं। और हम सभी रहते हैं प्यार से मिलके एक दूसरे के साथ में। तो मैं आने वाली हूँ मंडे अगेन, तो मंडे से पूरा सप्ताह रहूँगी आप लोगों के साथ में शाम 7 से 10 बजे तक ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लंदन में आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। ग्लो अराउंड द ग्लोब भी तो आप मेरी आवाज़ सुनते हैं। तो अपने आप का खूब ख्याल रखिएगा, वीकेंड पे मज़ा मस्ती इंटरेक्शन करें और ज़रूर सुनते रहें आपके फेवरेट रेडियो प्रेजेंटर्स को यहीं पे।
11: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner like our radio.
9: K Furniture's stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy a 3 and 2 seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
10: चाहे एक दिन के लिए सही।
11: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
12: A story full of heart, now on the big screen.
13: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
10: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
12: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today. Kumar Sanu live in concerts. Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall. Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold. Leica Radio Network.

0: This is Leica Gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 0 3 9 6 3 5 7 5 7. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: चलो जाइए एक नवा सफर पर
6: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
7: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
6: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
7: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
6: 01162662481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
8: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
9: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा।
10: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 1st May।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। दैट्स 02089072444।
13: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? Leica रेडियो और Leica गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@leicaradio.com।
15: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ Leica गोल्ड पर।

0: is Leica Gold.
1: Bank holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: This May, get ready for an unforgettable evening of soulful music. The UK Asian Film Festival presents Magical Melodies, featuring the mesmerizing voices of Rikta Mukherjee and the first ever winner of Sanegama, Mohammed Vakil, hosted by the radio goddess Sarita Sabarwal. Join us on Friday the 8th of May at the Blue Room in Harrow, HA26LY. Tickets available on tonguesoffire.com. Radio partners, Leica Radio Network.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।